0: माई मीरा के प्रभु उदय विहार मधुर मधुर मुरली घन श्याम।
1: यू आर लिसनिंग टू अवर डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय भगवान ऑन द 19th of August 1996।
2: You are tuned to Discourse Stream of Radio Sai, bringing you the divine message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba, 24 hours a day, 7 days a week. Sai Ram and happy listening.